0: Welcome to Radio Disco Sthan. Disco Sthan is a Los Angeles-based collective of artists curating sound, image, and text from an imagined federation of states spanning the regions of Eastern Europe, the Middle East, South and Southeast Asia, and eastward to the edge of the earth, from Beirut to Bangkok via Bombay. Narrative threads include migration, celebration, warfare, nostalgia, homeland, and borders, often within realms of Islamic influence. Through the lenses of timeless traditional forms, the kaleidoscopic reinventions of pop culture, and everything in between and beyond. Most simply, Disco Sthan is a love letter to the disorient.
1: ये नूर कैसा है राख का सा रंग पहने बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने गूंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है रुपहली छाओं में बदनामियों का डेरा है ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी दरो दीवार कहां रूह की आवारगी के नूर की वादी तलक लम्स का एक सफरे तवील हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ